0: खुदा नूं करतार नूं याद कर, सतगुरु भली करनगे। गुरु प्यारिओ जदों पत्थर नेड़े आ गया ते सच्चे सतगुरां ने अपना पावन हथ जिहड़ा सी ना उस पत्थर दे नाल लाता, उहनूं टच करता, उसे जगह दे उत्ते उह पत्थर रुक गया ते अज तक गुरदेव पातशाह दे उस पावन हथ दा उंगलां दे निशान पत्थरे विच अज तक छिपे हुए आ। इह साडा इतिहास है, इह सतगुरां दीआं रहमतां ने। गुरु महाराज भला करे। और इह वली कंधारी मैं फिर इह बेनती करां कि यह हंकारी लोग सतगुरों की शरण दे विच आ जिहड़े आउंदे सी ना, जिहड़ा भी एक बार दीदार कर लैंदा सी ओह फिर गुरदेव पातशाह दा हो के रह जांदा सी। यह हंकारी वली सतगुरां दे चरणां दे विच आ के अपना मत्था टेक दिंदा ते गुरु महाराज उहनूं माफ कर दिंदे ने, सच दा उपदेश दिंदे ने कि भलिया जे तूं तेनू सतगुरां ने यह मनुखा जन्म दिता ते ए मनुखां दी सेवा कर। सो बहुत बहुत तुहाडा सारयां दा धन्नवाद। सतगुरु रहमत करन, तुसी बड़ा प्यार बख्शिया, बहुत प्रेम दे नाल सतगुरां दे इतिहास दे बचन सुनन दा यतन करदे हो। सो इतिहास बोलदिआं विचारां करदिआं बहुत सारियां गलतियां हो जांदियां, तुसी बख्शण योग हो, गुरदेव पातशाह बख्शण योग ने, सतगुरु रहमत करन। असी इमानदारी दे नाल इतिहास नूं आप सिख संगतां दे सामने पेश करन दा यतन करिए। सानू सतगुरु बल बख्श देन, साडी खातर भी अरदास कर दियो। सो ढाडी जत्थे नूं बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्नवाद, बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी बलबीर सिंह जी बिहारीपुर, उन्होंने ढाडी जथेदार जिन्होंने आप संगत को पहले पातशाह महाराज धन धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी के जीवन कौतकों के गुर इतिहास ढाडी वाल सुना करके निहाल किया है। सतगुरु महाराज चढ़ती कला की दात बख्शिश करन। सात संगत जी हुण समा होया है गुरबाणी पाठ बोल समागम का। मन चित बिरतियां एकाग्र करके गुरबाणी पाठ बोल दे नाल जुड़ के समय और स्वासा नूं सफले करिए। जो साध संग जी 3 मई 2026 नूं गुरु चरणा विच अरदास बेनती करके गुरबाणी पाठ बोध समागम प्रारंभ होए सन, गुरु साहिब दी कृपा दे नाल जो 30 अगस्त नूं संपूर्णता दे समागम दी समाप्ति अरदास बेनती होवेगी। कल रोज तो सतसंग जीओ जो गुरमत समागम की आरंभता जिस विच विशेष तौर दे उपर 6:45 तक ज्ञानी दलजीत सिंह जी दमदमी टकसाल USA वाले कथा विचार की हाजरी भरनगे। 7-8 गुरबाणी पाठ बोध समागम होणगे ते 8-9 भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी गुरबाणी कीर्तन दीआं हाजरियां भरनगे। 30 अगस्त तक इस तरह साध संगत जी ए शाम दे समय समागम सजिया करनगे। 30 अगस्त दिन ऐतवार नूं सवेरे साध संगत जी 9 बजे सहज पाठ जी दे भोग अते शाम 4 बजे तों लै के 9 बजे तक संपूर्णता दे समागम सदनगे। सो साध संग जी आप संगतां दे चरणां विच बेनती है, सारे ही समागमां विच आप संगतां ने चढ़दी कला दे नाल सेवावां करके लाहे प्राप्त करने हन जी। आओ हुण साध संगत जी उन्हां समां मूल मंत्र गुरमंत्र सिमरन दे नाल जुड़ीए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम

0: संधि पाठ ही करना, संधि ना किया जावे, संधि जिवें ज्ञानी जी ने उच्चारण किया। हां जी,
1: महला पंजवा फरीदा खालक खलक महक।

0: कवण सो अखर कवण गुण कवण सो मणिया मंत कवण सो वेसो हव करी जेत वास आवे कंत निवण सो अखर खवण गुण जिहबा मणिया मंत ए त्रै भैणे वेस कर ता वस आवि कंत मत हो दी होए नियाणा
1: दोरे पढ़ दो
0: मत हो दी होए याणा ताण हो दे होए निताणा अण हो दे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए एक फिक्का ना गालाए सबना मैं सच्चा तणी हे आओ न कह ही ठाहे माणक सब अमोल वे।

0: तापन तापन पाठ कस के करना, इसनान दान तापन सोच किरिया, चरण कमल हृदय प्रभ तारी।
1: साजन मेद सखा हर बंधक, जी तान प्रभ प्राण आधारी। ओट गही स्वामी समर्थ है, नानक दास सदा बलिहारी। आवध कट्यो न जात, प्रेम रस चरण कमल संग। दावन बंध्यो न जात, विधे मन दर्श मग। पावक जरियो न जात, रहयो जान धूर लग। नीर न साक सुबोर, चलह हर पंथ पग। नानक रोग दोख आघ मोह, छिदे हर नाम खग। उद्दम कर लागे बहु पाती, बिचरे अनेक शास्त्र बहु खटुआ। भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते, सूखम देह बंध बहु जटुआ। बिन हर भजन
0: बंध है थोड़ा है तदा दे टिप्पी ला।
1: भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते, सूखम देह बंध है बहु जटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत, ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्र करत सोम पाका, अनिक भांत थाट है कर थटुआ। सवैये महल्ले पहले के, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
0: सवैये महल्ले पहले के, इथों जड़ा एक है साध संगत जी, ओ नहीं बोलना ते पहले के ही उचारण करना। सो इथे साध संगत जी भट साहिबाना दे सवैये प्रारंभ होए हन। भट रसना तो पहला सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जिया ने गरीब नवाज अकाल पुरख वाहिगुरु निर्गुण ब्रह्म दी साध संगत दी वडियाई करके बख्शिशा कीतियां हुण। हुण साध संगत दी निर्गुण दे नाल सरगुण दी वडियाई, सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जिया दा अदब सत्कार जो सानू गुरबाणी सिखाउंदी है। साध संगत दी अज कई वार आपां इधरों उधरों गल्लां सुन लैने आ, गुरु साहिब दे नां तों ही कई मुनकर होई जांदे आ। कई जांदे कि गुरु साहिबानां नूं विच नहीं रखणा चाहीदा। सो गुरु साहिबाना बाबत भगत साहेब भट साहेबान जिया ने जेड़े बचन उचारण कीते, धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सचे पातशाह महाराज जिया ने सामने बैठ के सुने, उन्हां नूं इन्हां सवैया नूं उचारण बाबत उचारण दे साध संगत दी प्रथाए, उन्हां नूं वाहिगुरु दे चरणा दे विच एक मिकता दियां बख्शिशां कीतियां। सो साध संगत दियो ए सवैये जे असीं अपने हिरदे च धारण करदे हां, जिद्दां भट साहिबाना ने उचारण कीते, जे उसे रूह तों असीं उचारण करांगे गुरु के चरणा च निवास मिलेगा। गुरु साहिब दियां खुशियां और गुरु का ए अदब है। पहले सवैये दे विच पहली ही पौड़ी दे विच साध संगत जी आपां ए सरवण करांगे कि गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दा नां किवें लैणा है। आपां माफी चाहना इन्हां गल्लां नूं, कई वार समा हुण साडे को थोड़ा है। सो कई वार ना आपां ना सुणदे आ कि पिता जी दा नां सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जीआं दे कालू कालू कही जांदे आ। गुरु नानक साहिब महाराज जीआं दा नां नूं नानक नानक करी जांदे आ। साध संगत जी किन्ना सत्कार, किन्ना हिरदे च भरोसा ते विश्वास चाहिदा है गुरु साहिबाना दे नाम लैण वास्ते। गुरु साहिबाना दे पिता माता जी जां बाकी परिवार दे सारे जीआं दा किन्ना किद्दां सत्कार करना चाहिदा है, वह भट साहिबाना कोलों आपां नाले सुनना है, नाले सिखना है अते जिंदगी च करना वी है। हांजी।
1: एक मन पुरख ध्याए बारदाता, संत सहार सदा।

सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरु मन ही माए। टिके होया मन सब कुछ समझ लेंदा है, भटकना जद मिट जाए। दो गल्लां धार्मिक जगत दे बिल्कुल गलत कहियां जांदियां ने, भई मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, गलत। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले कित्थों शुद्ध कर लोगे, किवें कर लोगे? फिर दूजी गल करदे ने, मन नूं एकागर करके बाणी पढ़ो। यकीन जानो इन्हां नूं मन दी समझ नहीं। इंज कहना चाहिए बाणी जपो ताकि मन एकागर हो। पहले कित्थों एकागर हो जाएगा? जे मन नूं एकागर करके बाणी पढ़ो, बिल्कुल गलत। इन्हां लोकां नूं मन दी समझ ही नहीं है। बाणी जपो ताकि मन एकागर होवे, मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ। हद हो गई। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किवें शुद्ध हो जाएगा? बिना सत्संग तो किवें जो है शुद्ध हो जाएगा? बिन भागा सत्संग न लब्भे, बिन संगत मैल भरी जे जीव। इत मैला हो जाएगा उल्टा। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा। कबीर कहिंदे ने, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। ऐसा बाणी दा बाण लगे है, पैरां तो पिंगला हो गया, भटकना मिट गई। इनू एक उर्दू दे माया नाज शायर ने इंज कह लो टीका ही कीता होवेगा। जरूर इन्हां भगतां दे ख्याल उसने सुने होने ने, या चलो उसका अपना निजी अनुभव होवे। मिर्जा गालिब कहिंदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है। कहिंदा जिहड़ा मेरा पैर टुट गया है ना, इस टुटे पैर दा मेरे ते बड़ा एहसान है। मैं इसका एहसान मन रहा जो मेरा पैर टुट गया। हद हो गई। पैर टुट गया ते टुटे पैर दा एहसान शुकराना पिया करदा है। अगे दसदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। हुण मैं तेरे दर जोगा रह गया, किधरे जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहिंदा गल खुदा तेरी समझ च आ गई है, पर की करम, मैं बोल नहीं सकता, गूंगा, समझा नहीं सकता। बिसम बिसम बिसमे ही भइए लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आइए ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। एक होर गल भी बड़ी कीमती करता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, हर दिल विच रब्बी प्यार नहीं पैदा होता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये वो गीत है, इनू हर सांस ते नहीं गाया जा सकता। ये ओ राग है, ये ओ गीत है, जिदे वास्ते विशेष वाजा चाहिदा, विशेष साज चाहिदा है। भाव हर दिल दे चे नगमा नहीं गूंजदा। पहले दिल दी बणतर बनानी पैंदी है, सत्संग कर करके कर करके कर करके। तो मैं अर्ज करा, उदास होण दे निराश होण दे तीन कारण ने। पहला, बड़ा गहरा स्रोता होवे ते गुरु दा शब्द चोट कर जाए, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। दूसरा, अपनी अकल तो चोट खा लवे, बड़ा ही सियाणा होवे, हर गल नूं बड़ी गहराई नाल लैंदा होवे। बीमार असी भी देखते हैं, पर इको ही दिन महात्मा बुद्ध ने जेदा नां सिद्धार्थ सी बीमार देखिया, बस दिल चोट खा गया। मुर्दे असी भी देखते हैं, इको दिन एक लाश देखी, हिरदा चोट खा गया। बुढ़े मनुख असी भी देखते हैं, जईफ,
ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।

या संसार तो चोट खा दी है, खतरा है, खुद नु बदलन दी तांते किधरे खुद नु खत्म ना कर बैठे, खुद नु बदलन दी तांते किधरे खुद नु भुलाण दी कोशिश ना करे, हर वक्त नशे दी ची गलतान रहन लग पाए। संसार तो चोट खाके भी कुछ लोग टोटली निराश उदास होके आत्म क्रांति करते रहने, खुद नू बदलते रहने, जैसे महात्मा बुद्ध अपनी अकल तो चोट खा गए, सत्संगी नहीं सी, कोई सत्संग नहीं कीता उसका, कोई दुख भी नहीं सी, संसार तो भी चोट नहीं लगी, राजे दा लड़का और एको एक लड़का, सारे सुख साधन मौजूद, अकल तो चोट खा गए, कहिंदा कुछ भी नहीं जगत, कुछ भी नहीं, अकल तो चोट खा के भी कई लोगों ने आत्म क्रांति की थी है। संसार तो चोट खा के भी कुछ एक लोगों ने आत्म क्रांति की थी है, अपने आप को बदलने का यत्न किया है, जैसे राज योगी भर्तरी, ये सत्संगी नहीं सी, ये भी मैं अर्ज करा, और इन्हें अपनी अकल तो भी चोट नहीं खाधी, फिर ये योगी क्यों बने हैं, गोरख का चेला क्यों बने हैं, आप सुन के हैरान होवोगे, प्राणायाम दी साधना करके इन्हें अपनी उम्र इतनी लंबी कर ली सी, ये गुरु नानक दे वक्त मौजूद सी, साड़ी जन्म साखी ये कहंदी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भर्तरी दे पते तीन शब्द उच्चारण किए ने आसा राग दे, सिफती रत्ता सदवै रागी जुए जन्म ना हारे, कहे नानक सुन भरतर जोगी खीवा अमृत धारे। तीन शब्द ने इसकी व्याख्या की, मूल जिहड़ा मजमून मैं छेड़िया रह जाएगा, तिने शब्दों दी दो दो पंक्तियां थानू सुनावा। जलते उपजे जलते दूर, ए दूजा, जलते उपजे जलते दूर, जल में जोतरिया भरपूर, सुन भरतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आधार। इतनी उच्ची परवाज, उच्चिया गल्लां सुन के भरतरी दंग रहा है, क्योंकि भरतरी सतगुरु दे चरने पै गया सी, निर्माणता इहदे अंदर कुछ जानन दी बुख सी, पुछ बैठा महाराज थोड़ा पंथ की है, क्योंकि वो ते जोगी सी, वो ते गोरख पंथी सी, गोरख दे मार्ग दे चलदा सी, गोरख दा चेला सी, थोड़ा पंथ की है। उन्हें तीजा शब्द, सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कहे नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। ऐ भरतरी, साडा पंथ पुछदे, सारे जगत दे भेख वरन मजहब जात पा, सारियां दे नाल चलना ते सारियां नू अपने नाल चलाना, बस नानक दा पंथ यही है, और कोई पंथ नहीं, और कोई पंथ नहीं। पंक्तियां फिर सुन लेना, सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कहे नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। भरतरी सारे जोगियां दे चां बहुत गुरु नानक दे श्रद्धा रखदा सी, श्रद्धालु सी, झुकिया सी। हुण मैं अर्ज करा, भरतरी कोई सत्संगी नहीं सी कि सत्संग तो चोट खा के जोगी बने आवे। भरतरी ने कोई अपनी अकल तो भी चोट नहीं खा दी, ये भी मैं अर्ज करा। भरतरी नू संसार तो चोट लग गई। तुसी आखोगे राजा सी, बड़े बड़े महल धन संपदा, केड़ी गल दी कमी सी, ये अपनी पत्नी तो चोट खा गए। इदी पत्नी दा नां सी पिंगला। वैराग शतक दा जिहड़ा पहला छंद है उहदे च दसदा मैं जोगी क्यों बणिया, इत्थों ही आरंभ करदा है। इहदे तीन ग्रंथ ने, वैराग शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक। धार्मिक जगत दे

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वाल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे कार औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश कर दियन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल। अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: घर तक ना पहुंचे, इन्हां नूं असाधारण कहिंदे ने। ये साधारण लोग नहीं ने, असाधारण ने। ये सूक्ष्म देह ही बहुत जल्द जन्म नहीं लेंदी। ये सूक्ष्म शरीर बहुत छेती गर्भ दे च प्रवेश नहीं करता। क्यों? जितनी वाट इसने तय की थी ये चल चल के, इतने ही संस्कारां वाली कोई मां होवे तां गर्भ दे च प्रवेश करनगे, वरना नहीं। इस तरह दी कोई मां होवे जिहड़े उन्हां कोल संस्कार ने चल चल के, जो उन्हां नूं अनुभव मिले। दूसरे असाधारण कौन? जैसे 2.5 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर, औरंगजेब अपने 3 भरावां नूं मार के, भतीजियां नूं मार के, अपने प्यो नूं जेल दे च पा के सिंघासन ते बैठा है। ये कम कोई ओ कर सकदा जिहदे कोल दिल नहीं पत्थर होवे, दिमाग ना जड़ होवे, मनुख ना वैशी होवे, दरिंदा होवे, ओ कर सकदा। भतीजियां नूं भी मार दो, भरावां नूं भी मार दो, बुढ़े प्यो नूं भी जेल दे तड़पा के मारो। वड्डी भैण जहां आरा आई, उन्हों जद पता चलिया कि दारे नूं भी मार दिता है। सुनिया सी उसने पहले शुजा नूं मार दिता है, मुराद नूं मार दिता है, पर जद हुण पता चलिया दारे नूं भी मार दिता है। दारा बड़ा नेक तबीयत इंसान सी, दानी मिजाज सी, और ज्ञानी सी, शायर सी, कवि सी, विद्वान सी। सूफी फकीरां दी ज्यादा संगत विच रहिंदा सी। फकीर तबीयत इंसान सी। जहां आ रहा है वड्डी भैण इस बिरा नाल बड़ा प्यार करदी सी और बड़ियां दुआवां देंदी सी, तो खुदा दे मार्ग ते चले हैं, खुदा तेनू अपने घर तक पहुंचावे, तेनू पूरे बोध हासिल होवे। पर जद पता चलिया, बड़ी बेदर्दी नाल औरंगजेब ने दारे नूं भी कतल कर दिता। रोंदी हुई आई औरंगजेब कोल, पहले ते बड़ी ताड़ना कीती, मूर्खा तू ए की कीता, मासूम बेरा, खुदा तरस बेरा, खुदा शनास जो सी। और बड़ा फैज दिल बंदा, फयाज दिल बंदा, बड़ा दानी मिजाज दा, तो उन्हों भी मार दिता है। कहिंदन अंदर इतना जोश आया, जहां आरा ने हथ चुक लिया औरंगजेब नूं मारन वास्ते, ए तो की कीता। औरंगजेब ने उसे वक्त उदी गुत पकड़ी, घसीट के लै गया जिस कमरे दे च प्यो बंद सी, नाल दे कमरे च उन्हों बंद कीता। 7 साल बिचारी जेल दे च रही है। ये कम कोई ओ कर सकदा जिहदे कोल दिल नहीं पत्थर होवे, जिहदे कोल दिमाग नहीं सिर्फ जड़ भूसा होवे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे मनुखां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा। हिटलर जैसियां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा, हर नाकस जैसियां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा। कितना मूड, कितना चेत पशुआं नूं मात कर गया। 7 साल दे प्रहलाद नूं, मासूम बच्चा है, हर नाकस कहिंदा तू जपया कर, जल हर नाकस, थल हर नाकस, ताकि तेनू वेख के होर बच्चे भी जपन, ते असी निरंकार करके दुनिया विच जाने जाइए। निरंकार होने की तौफीक मनुख नूं निरंकार ने दित्ती है। ध्यान नाल सुनना, निरंकार होने की उमंग ते तड़प भी मनुख नूं दित्ती है। मनुख ऐसा जीवन चाहता है जिहदे च मौत ना होवे। ऐसा जीवन केवल परमात्मा कोल है जिहदे कोल मौत नहीं। मनुख ऐसा रस चाहता है जो कदी बेरस ना होवे, तो ऐसा महारस ते परमात्मा ही है। मनुख ऐसा सुख चाहता है जो कदी दुख दे च ना बदले, ऐसा सुख ते केवल परमात्मा। मनुख ऐसी शक्ति चाहता है जो कदी कमजोरी दे च ना बदले, उस महाशक्ति का ना ही तो परमात्मा और की है। मनुख परमात्मा होना चाहता है, होना चाहता है। परमात्मा होने की सौगात परमात्मा ने हर मनुख नूं दित्ती है, हर एक नूं दित्ती है। किस तरह परमात्मा वेखदा है, सब कुछ वेखदा है, मनुख भी वेखदा है। एक गल वखरी है, सब कुछ नूं वेखण दी तौफीक नहीं पर वेखदा है। परमात्मा सुणदा है, पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाणिया दूरी है। सदा वेखदा पै, सब नूं वेखदा पै, सब नूं सुणदा पै, सदा सुणदा पै। ठाकर हमरा सद बोलंता, सदा बोलदा पै और उहदा बोल सारी दुनिया विच गूंज रिहा है। अनाहद ना मनुख भी सुणदा है, वेखदा है, मनुख भी समझदा है, पर सीमित है। मनुख भी जानदा है पर सीमित है। ये असीम होना चाहता है, असीम तो केवल परमात्मा ही है। मनुख परमात्मा होना चाहता है, परमात्मा होने की इसके अंदर भुख है और इंज कह लो शायद परमात्मा नहीं पाई है। और ऐसा हो सके, परमात्मा हो सके, ऐसी तौफीक भी परमात्मा ने दिती है। शायद इसे वासे जफर कहता है, बनाया ऐ जफर खालिक ने कब, इंसान से बढ़कर मलिक को, देव को, जिन को, परी को, ऊरे गिलमा को। मनुख तो वध परमात्मा ने किसे नो नहीं बनाया, क्योंकि मनुख का ही भविष्य है परमात्मा होना। पशुआं का भविष्य अजय मनुख होना है, बनस्पति का भविष्य अजय पशु होना है, पत्थरां का भविष्य तो अजय बनस्पति होना है। केवल मनुख का भविष्य है परमात्मा होना। फरवरी का महीना पिछलिया, इस साल दे जो लंघे, मैं कानपुर दे सी, सज्जन मित्र नाल सन। अमृत वेले मैं नितनेम पिया करा ते फोन आई दिल्ली तो। मैं खैर होवे सही है, अमृत वेले 4:30 बजे कि कौन फोन करता है। दिल्ली तो एक नौजवान पुछना चाहता है मैनू, कोई मस्कीन जी सुने है, तुसी भविष्य वक्ता हो, भविष्य जानते हो? मैं कहां जानना, भविष्य वक्ता, भविष्य जानना। कहन लग्या कि फिर हुण तुसी आ रहे हो ना दिल्ली की बाई, संत बाबा अतर सिंह जी की बरसी ते मैं पहुंचना सी, तुसी आ रहे हो, असी पोस्टर पढ़े ने, असी थोड़े कोल आवांगे अपना भविष्य जानने वास्ते। मैं कहो दो ते गल बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत दिन पए ने, मैं थानू हुणे ही भविष्य दस देना, तुसी हुणे ही पुछ लो। कहिंदे हुणे ही दस दोगे, फोन ते दस दोगे? मैं कहा हुणे ही दस देंगे। तो मेरा भविष्य की है? मैं कहा केवल तेरा ही नहीं, तेरे सारे परिवार का, सारे संसार दे मनुखां दा इक्को ही भविष्य है परमात्मा होना, और कोई भविष्य नहीं। चंगा परिवार मिल गया तृप्ति नहीं मिलेगी, चंगा कारोबार मिल गया है परेशानियां नहीं जानगी, बड़ी धन संपदा मिल गई, रहन नूं उच्चा महल मकान मिल गया है बेचैनी नहीं जाएगी, बड़ा बैंक बैलेंस हो गया है, नोटां दे अंबार लग गए ने, व्याकुलता नहीं जाएगी, दुख नहीं जाएगा, दुख नहीं जाएगा, बेचैनी नहीं जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी, चिंता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उदो मिटन गए जिस दिन परमात्मा मिलेगा, उस तो पहले नहीं। दुख भी बनिया रहेगा, संताप भी बनिया रहेगा कि होया तू चोटी का धनवान हो, दुख भी बनिया रहेगा, चिंता भी बनी रहेगी कि होया तू दार्शनिक ते फिलोसफर हो, दुख भी बनिया रहेगा, कलेश भी बनिया रहेगा कि होया तू बहुत वड्डा शक्तिशाली राजनैतिक हो जाए, धनवान हो जाए, कि होया तेरा महल उच्चा हो गया, मकान बहुत वड्डा हो गया, दिल दी व्याकुलता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उस दिन मिटेगा जिस दिन तू परमात्मा हो जाएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए, भगत कबीर एलानिया कहिंदे ने, बिगड़ियो कबीरा राम धोआई, साच भयो अन कते न जाई। कहिंदा संतां दी संगत विच आपां ऐसे तब्दील होए की हो गए, सच हो गए। हुण सच ते परमात्मा, तो कबीर कहिंदे ने होवेगा परमात्मा सच, आपां वी सच हो गए। ध्यान नाल सुनना, बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई। मैं सच हो गया, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी। मैं कह सारे मनुखां दा एको ही भविष्य है, राम हो जाना, भगवान हो जाना, परमात्मा हो जाना। ते परमात्मा होण दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने, सारिया नूं दित्ते हुए ने, सीमित ने, ये असीम हो सकते ने। उन्हों याद कर करके किवें उसनों याद करिए, पहले दर तक पहुंचिए, फिर दर ने ही घर दे प्रवेश करा देना। इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी, प्रवान करनी सारिया दा, और मुखी सजणा दा बार बार धन्यवाद।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
3: Namastang nar dese, namastang nar pese, namastang nar name, namastang nar kame, namastang nar tate. नमस्तंग नर काते, नमस्तंग नर तूते, नमस्तंग अपूते, नमस्तंग अलोके, नमस्तंग अशोके, नमस्तंग नर तापे, नमस्तंग अथापे, नमस्तंग तरमाने, नमस्तंग निधाने, नमस्तंग अगाहे, नमस्तंग अबाहे, नमस्तंग तरबर्गे, नमस्तंग असर्गे, नमस्तंग परपोगे, नमस्तंग सोजोगे, नमस्तंग अरंगे, नमस्तंग अपंगे, नमस्तंग अगमे, नमस्तस्तरमे, नमस्तंग जलासरे, नमस्तंग निरासरे, नमस्तं अजाते, नमस्तं अपाते, नमस्तं अमजबे, नमस्तस्त अजबे, अदेसं अदेसे, नमस्तं पेसे, नमस्तं नृतामे, नमस्तं

चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र भरती चत्र चक्र भरती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्रह न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र पर है पवित्र परथी से आदि से अदर से अक्र से भगवती छंत व प्रसाद कथते क्या छे ज देस क्या भिज भेस क्या गंज करम क्या भंज भरम क्या भिज लोक क्या दित सो क्या वधूत वर्ण क्या विभूत करण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के अशोक भरण है के सर्वा भरण है के जगतंग कृति है के छत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनपो अनूप है के आद आदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहीन है।

चरपट छंत है प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ख्याता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग करता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग जोग

नमस्तल परनामे समस्तल परनासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग परनासी सो धर्मंग विभूते।

के माते मतांग जर जर सांग अनूप उतांग सुरांग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बेदन आवत शीस न जात बिचारे एते भय तो का भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरा सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदांग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भवेख भवान के भूपत कौन गाना नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख्या वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जत हर सब सो बिचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है।

पीर पछान घट घट के पट पट के जान जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बद

0: परमात्मा है घर दर, ओदे दर दे विच दर्शन नहीं जाता, परमात्मा दे साडे हिरदे विच ही है, ओदे दर्शन नूं जाणी नहीं सत्संगियो। पिरका सहज ना पाया ते पति परमात्मा दा ज्ञान इनू चंगा नहीं लग्या।
1: सतगुर पूछ ना मार्ग चाली, सूती रहन विहानी।
0: किते भी सफर ते जाइए, नवे इलाके च जाइए, तो असीं पुछ लैंदे, अजकल तो दूजा सिस्टम आ गया ना सत्संगियो, GPS ला लईदा। पर जिन्हों इन्हां दा चीजां दा नहीं पता जां जिन्हां समय च नहीं सी हुंदा, उदों आपां रस्ता किसे तो पुछ लईदा सी, ते जिन्हों जानकारी उस बहुत छेती तौर छेती ही सत्संगियो जिहड़ा है वह रस्ता दिखा देगा, ते छेती मंजिल ते पहुंच जांगे। अमृतसर साहब दास गया दंद विखाउण वास्ते, कुछ ट्रीटमेंट करवानी सी दंदां दी, ते मैं कुदरती जाना सी कचहरियां नूं। मैं ADA नाल अटे सटे स्कूटर एक सड़क ते पा लिया, तुर पिया, अगे जाके एक रोड आ गई, तो मैं उत्ते पा लिया। मैनू पता लग गया उदां कि मैं गलत बने तुर पिया, जाना होर बने सी, मैं चला होर बने गया। तो मैं कुदरती ना सोचा मन च किसी नूं पुछ लवां, मैं बेनती कर रहा कि जे आपां मार्ग पुछ के चलीए तो किड्डी छेती जाईदा। मैं साइड रू कीता, स्कूटर एक भाई खड़ा सी उत्थे, आम एक व्यक्ति, उन्हें पुछया मैं जाना सी कचहरी, उन्हें मैं किराए पै गया। सामने एक छोटी जी गली सी निकी जी, मैनू कहिंदा इहदे ऐज गली दे विच पै जाओ, मुड़े हो किते ना सीधी चल जाणी कचहरी नूं। उह सत्संगी उह गली मैं पै गया, ते थोड़े गांह गया ते कचहरी आ गई। मतलब जे ना पुछदा मैं परी किधर नूं तुरे फिरना सी, मैं बाहर नाल जाणा सी रिंग रोड नूं। इस लई सत्संगियो गुरु नूं पुछ के ही मार्ग ते चलीए। सतगुर मेहर करदे ने कि गुर सतगुर पूछ ना मार्ग चाली, गुरु नूं पुछया ही नहीं भगती किवें करनी है, वाहिगुरू किवें मिलदा है, परमात्मा की प्राप्ति किवें हुंदी है। सतगुर पूछ ना मार्ग चाली, पूछ शिशरी लगी, पूछ पुछ के वाहिगुरू दे मार्ग ते भगती दे मार्ग ते चली नहीं। सूती रहन विहाणी, सुती दी ही सारी जिंदगी लंघी। सत्संगियो तीही गुणी संसार परम सुत्ता, सुत्तियां रहन विहाणी रोज पढ़दे हां, तिन्ना गुणा दे विच इह जीव सुत्ता पिया, सुत्तियां ही सारी उम्र लंघी। गुरु नूं पुछिया ही नहीं, मार्ग ते चले नहीं, गुरु दे अनुसार चले नहीं, गुरु दी सिख्या ते चले नहीं। असी
1: नानक बाल तन राडेपा, बिन पेर तन कुमलाणी।
0: सच्चे पातशाह जी मेहर करदे गुरु नानक देव जी, नानक बाल तन राडेपा, बालतन दा अर्थ बचपन दे विच ही, राडेपा दा अर्थ सत्संग समझदे हन। वाहिगुरू कृपा करे सुहाग ਭਾਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਰਾਡੇਪਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਨਕ ਬਾਲਤਨ ਰਾਡੇਪਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੀ, ਕੁਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾਸਤਕਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਪੈ ਗਈ। ਨਾਨਕ ਬਾਲਤਨ ਰਾਡੇਪਾ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਧਨ ਕੁਮਲਾਣੀ। ਬਿਨ ਪਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕੁਮਲਾ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ

अखां दे चोने रंकार दी झलक टपक दी है। नैन रहे रंग लाए, आंखें जुबान नहीं लेकिन बेजुबान नहीं। उस्ताद जौक कहने ठीक है, अखां कोल जबान नहीं है लेकिन इन्हों किधरे बेजुबान ना समझ लेना। बहुत कुछ कह जाने, बहुत कुछ कह जाने। रस्ते च एक बंदा मिलता है, वो कहता है मित्रा तेनों मिलके बड़ी खुशी हुई, अखां दस दियां पईआं ने कमबख्त कित्थों मिल गया, जरूरी काम ते जा रहे सी, हुण वक्त जाया करेगा। अखां कुछ होर कह रही, अखां झूठ भी नहीं बोल सकदियां, जबान झूठ बोल दी है। अखां गलत बयानी भी नहीं कर सकदियां। तो मैं अर्ज करां जिवें हाथ खो भी सकते ने, हाथ दे भी सकते ने, अखां बहुत कुछ दे जांदियां ने, अखां बहुत कुछ खोंदियां ने। ये भी मैं अर्ज करां, बहुत कुछ खो लैंदियां। किसे दे धन नूं ते किसे दे रूप नूं लोभ वस होके देखना। अखां नूं संस्कृत विच कहिंदे ने लोचन, ते तकड़ी नूं कहिंदे ने लोचा। ये दोवें शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच आए ने, लोचन लोचा। ये लोचा किसे दे रूप ते टिक जाए हटे ही ना, ये दृष्टि हटे ही ना, फिर उसे नूं कहिंदे ने गुस्ताखी, माफ लोचा। लोचन लोचा लोचा गाल है, इतने लुचा इतनी अखा नाल अगले की असमत लुटदा पे, इतनी अखा दे नाल अगले की इज्जत पे लुटदा, इतने लुचा गाल है। लेकिन लुचा का मतलब इतना ही है, लोभ वस होके वाशना वस होके किसी के रूप नु वेखना या किसी के धन नु वेखना। गुस्ताखी माफ, मैनू कहण देना, कईयां दे हाथ चोर नहीं आउंदे, नजरां चोर आउंदियां। कईयां दे हाथ ते नहीं खोंदे, क्यों? डर है कानून दा, समाज दा, हथकड़ियां ने, जेलां ने, हथां नूं हथकड़ियां पै सकदियां ने। नजरां नूं कौन हथकड़ियां पाएगा, किसने पाणी? कानून पा सकदा, समाज पा सकदा। यकीन जानो हाथ मनुख दे बिल्कुल साफ सुथरे ने, इतने मैले नहीं। अजोके संसार विच मनुख दियां जितनियां नजरां मैलियां ने, इतने हाथ ते कपड़े मैले नहीं ने। नजरां बहुत मैलियां, बहुत मैलियां। लोचन लोचा लुचा, इस संबंध उते मैं काफी कुछ लिखिया भी है नजरां दे उते। खैर मैं अर्ज करा, कबीर कहिंदे ने ये नजरां ही मेरे कोल प्रूफ ने, अखां ही मेरे कोल प्रूफ ने, मेरी अखां ने प्रभु नूं वेख्या, जो मैं वेख्या ते कह रहा। दोए दोए लोचन पेखा, हां हर बिन अवर न देखा। तो मैं अर्ज करा ये अनुभवी पुरुष ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे बोल, ये किसे कवि दे बोल नहीं ने, ये ब्रह्म वाक ने। की बोलिए परमात्मा नाल संबंध जुड़ जाए, वो बोल बोलो जो आए ही परमात्मा तो ने। परमात्मा नाल जोड़नगे परमात्मा दे बोल, अपने बोल नहीं जोड़ सकते। अपनिया कितनिया ही कवितावां हो जान कुछ भी नहीं है। ये गुरबाणी जपोगे ते खेड बन जाएगी, जप मन मेरे गोविंद की वाणी। साधु जन राम रसन बखाने, एक बड़ा भारी भुलेखा है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु जपना सिमरन है, बाणी पढ़नी नितनेम है, सिमरन नहीं। गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाई। कौन कहिंदा है बाणी जपनी नाम जपना नहीं है? सिमरन का मतलब है याद करना। तो जे वाहिगुरु वाहिगुरु करता पे अंदर याद नहीं चलती पई, तो वाहिगुरु वाहिगुरु की प्या करता है? कुछ भी नहीं, हमें हवा चुट जाएगा। ये भी मैं अर्ज कर दे, वाहिगुरु वाहिगुरु का जपना अपने आप नूं जगाण वास्ते, परमात्मा नूं सुनाण वास्ते नहीं। जितना मन जागदा जाएगा बाणी दे जप नाल, वाहिगुरु दे जप नाल, उतना ही परमात्मा दा पता चलदा जाएगा, पता चलदा जाएगा। हुण मैं अर्ज करा, अनंत काल पहले, अरबा खरबा साल पहले, धुंध से अंधकार से एक धमाका होया, आवाज होई, एक जवान होके स्वामी महावीर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक देव जी, भगत कबीर, उपनिषदां दे 60

सतनाम कर्ता पुरुष निरभो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नान के राम दामोदर माधवे गुरु रूप सत्संग जीओ पते प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो दर कहा सो घर कहा जित बह सर्व संभाले। ओ दर कैसा है ओ घर कैसा है हे प्रभु जिथे बैठ के तू तमाम ब्रह्मंड दी जीवां दी संभाल करदा। फिर सतगुर रामकली राग विच ऐसा कहंदे ने रामकली मल्ला पहला जित दर वसें कवन दर कहिए दरां भीतर दर कवन लहे जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कहे सारे दरां तो उदास होके निराश होके जिस दर दी मैं तलाश कर रहा कोई दसे कोई ते दसे। एक हकीकत है जितने चिर तक संसार दी प्यास बड़ी प्रबल है निरंकार दी प्यास पैदा ही नहीं होती। जितने चिर तक पदार्थां दी भुख बड़ी प्रबल है परमात्मा दी भुख पैदा ही नहीं होती। ऐसा क्यों हो जाता है? दरअसल शरीर दियां जिहड़ियां लोड़ां ने उन्हों मन अपनियां लोड़ां बना लैंदा। कुछ लोड़ां शरीर दियां ने पर उन्हां लोड़ां नाल मन अपने आप नूं जोड़ लैंदा है तो लोड़ां लोभ बन जांदियां तो फिर लोभ दी कोई सीमा नहीं है कोई सीमा नहीं है। गुरबाणी दी जो बारीकियां ने मैं आप जी दे सामने रख रहे हां जिस दिन सच्चे नाम दी भुख पैदा होई सच्चे नाम की लागे भूख तो समझ लेना जिहड़ी झूठ दी भुख सी वह शांत हो गई। झूठ किसनों कहिंदे ने जो है ते नहीं हो जांदा उन्हों मिथ्या कहिंदे ने है पर नहीं हो जांदा। बचपना है सी नहीं हो गया जवानी है एक दिन नहीं हो जाती बुढ़ेपा है एक दिन नहीं हो जाता ये जीवन है एक दिन नहीं हो जाता। इन्हां अखां नाल जो कुछ भी दिखाई देता है जो है वो नहीं है देख बदल जाता है उन्हों मिथ्या कहिंदे उन्हों झूठ कहिंदे कूड़ सब संसार।
जितने चिर तक उसकी प्रबल भुख है परमात्मा की भुख पैदा ही नहीं आती। संसार दियां लोड़ां ने और लोड़ां इस तन दियां ने और उन्हां लोड़ां नाल मन अपने आप नूं जोड़ लैंदा है तो फिर लोड़ां लोभ बन जांदियां ने और मन की यात्रा रुक जांदी है। ऐसा नहीं कि मन टिक जांदा है, मन गर्दिश दे च रहिंदा है, वो सही गर्दिश दे च जिन्हों घूमण घैरी कहिंदे ने जिन्हों चक्कर कहिंदे ने और मन सीधे रस्ते तो भटक जांदा है। तन पदार्थ है, पदार्थां तो बने हैं, मन तो जोत स्वरूप है, अपना मोल पछाण ये पदार्थां तो नहीं बनया, ये सीधा जोत स्वरूप है। खैर हुण मैं मूल गल आप जी दे सामने आरंभ करा। अनंत काल तक जो धुंध सी ये पूरा खुलासा आप सरवन कर रहे हो, अरवद नरवद धुंधु कारा धरण न गगना हुकम अपारा नांद न रैन चंद न सूरज सुनने सुन समाद लगाएना। ये दास ने काफी खुलासा थोड़े सामने किया है। धुंध ही धुंध से उसे धुंध दे एक धमाका होया, आवाज हुई, एक कवाओ होया, एक बोल होया, कीता पसाओ एको कवाओ। तो वो कवाओ की से वो ब्रह्मंड दी पहली आवाज से, पर वो आवाज की से कलगी दर कहने ने ओ अंकार आद कथने अनाद, अनादि कथनी पहली आवाज की सी ओंकार। इनू कबीर भी कहते ने ओंकार आद मैं जाना लिखिया रमेटे ताए नवाना। इनू धन गुरु नानक देव जी महाराज ते बड़ी लंबी चौड़ी बाणी च बयान करते ने और उस बाणी का नाम भी है ओंकार। ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जनचित, ओंकार सैल जुगवै, ओंकार वेद निर्मय। हुण इस दे च मैं थोड़ा समा ना लवां क्योंकि मैं सारा खुलासा कर बैठा। इस धुन तो अरबां खरबां सूरज पैदा हुआ है। पहले सूरज नहीं सी, ना दिन रहन चंद ना सूरज सुनने सुन रहा है, ना दिन सी ना रात सी ना सूरज सी ना चंद्रमा सी ना ये जमीन सी ना आसमान सी, ना दिन रैन चंद न सूरज सुनने सुन रहा है। अरबद नरबद धुंधु कारा धरण न गगना, ये धरती नहीं सी, गगन भी नहीं सी, ये ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे नहीं सन। इस धुंध दे एक कवाओ होया, कवाओ ओंकार, उस तो अरबां खरबां सूरज बने, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े, धुंध पानी बन गई, ए धरण ए धरती सूरज दा टुकड़ा। समा पाके जद ठंडी होई तो ए फिर पत्थर दे रूप दे प्रगट हो। संसार दिच आकार पहले पत्थर दा बनया, पत्थर लखां साल दी लंबी यात्रा तो बन मिट्टी बन बनस्पति बनया। बनस्पति लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद पशु पक्षियां दी शक्ल दे प्रगट होया और पशु पक्षी लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद जिस रूप दे प्रगट होए उनू मानव कहंदे ने, मनुख कहंदे। चूंकि मनुख उन्हां सारियां तो लंघ के आया है तो कुछ ना कुछ संस्कार सारियां दे इहदे विच है गए। पत्थरां तो लंघ के आया, बनस्पति तो लंघ के आया, पशुआं तो लंघ के आया, मनुख बने। मैं एक मिनट लवां, पत्थर टोटली सुत्ता होया तो सुते हुए की कोई लोड़ नहीं आती, पत्थर की कोई लोड़ नहीं। पत्थर जब मिट्टी बन के बनस्पति के रूप में प्रगट होया तो थोड़ी जिया बनस्पति जागी उदी लोड़ है, पानी उदी लोड़ है, प्यास लगती है। बनस्पति
ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਨ ਇਸ ਮਾਨਵ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੁਸ਼ ਮਨੁੱਖ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਪੱਥਰ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਪਾਏ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਤ, ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੋ ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਹਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਮਹਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਸੂਰਜ ਹੋਏ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੰਤ ਧਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੱਥਰ ਹੋਏ, ਬਨਸਪਤੀ ਹੋਈ, ਪਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਮਾਨਵ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਤਨ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮਨ ਪਛੜ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤਨ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਕੁਝ ਹਾਥੀ, ਗਊ, ਮੋਰ, ਹੰਸ, ਮਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਕਦਾ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਤਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨ ਪਛੜ ਗਿਆ, ਤੋ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਤਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਤਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਸੋਚ ਸਕਣ, ਅਜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਅਜੇ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਪ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ, ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸੰਸਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾ ਗਈ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲ ਗਿਆ, ਦੀਪਕ ਜਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ,
ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ, ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਨੇਰਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਾਨਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, 5:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੌਣ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਭਵਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੋ, ਭਵਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਦਾ। 21-22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਿੱਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ 21-22 ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਭਵਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 21-22 ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਵਿਸ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਵਿਸ਼? ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਜੂਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਦਬਖਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਬਦਬਖਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਬੋਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਦਬਖਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਰ ਇਨਸਾਫ ਪੁਰਸੀ ਬਦ ਅਖਤਰ ਕਸ ਅਸਤ ਕੇ ਦਰ ਰਾਹ ਤਸ਼ ਰੰਜ ਦੀ ਗਰ ਕਸ ਅਸਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੰਜ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਦੇ ਚੋਂ ਹਾਸੇ ਲੱਭਦਾ ਬਦਬਖਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਗਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਬਦਬਖਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਭੈੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਅਭਿਆਸੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਸੁਭਾਉ ਕਰਕੇ, ਹਰੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਿਰਭੈ ਹੈ, ਸਮਦਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਈਸ਼ਵਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਸਵੈਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਗਰਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਆਈ ਸਾਚ ਭਇਓ ਅਨ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਐ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ। ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
फिर कलेश बनिया रहेगा, फिर बेचैनी बनी रहेगी। ये समझ जिसनों आ जाए, समझ लो मन ज्यादा जा गया। मैं अर्ज करा हूं मनुख दे अंदर, किसी दे अंदर पशु दे संस्कार बड़े प्रबल होंगे, किसी दे अंदर वनस्पति दे, किसी दे अंदर पत्थर दे। असी कह देने ये दे पत्थर दिल है, इदा ते दिमाग पत्थर है। हिटलर, मोसोलिनी, औरंगजेब, चंगेज खान, हालांकि असी कह सकते हैं दिल नहीं सी पत्थर से, दिमाग नहीं सी पत्थर से। इन्ना कठोर मनुख, इतना सख्त मनुख, बस्तियां उजाड़ के लंघदा सी चंगेज खान, लाशां नूं तड़पदियां देख के हलाकू हसदा हुंदा सी, तिन्ना भरावां नूं कतल करके औरंगजेब ने जशन मनाया सी। 3 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर, ये कोई पत्थर दिल कर सकता है, पत्थर दिमाग कर सकता है। आकार रूप दे पहले पत्थर प्रगट होया, वो जो अग दा गोला ठंडा होया वो पत्थर दे रूप दे प्रगट होया। आकार पहले पत्थर है। मनुख करीबन करीबन अपने पिछोकड़ नु पूजदा रहे है। ए भी मैं अर्ज करा, सारी दुनिया च पत्थर भी पूजे जांदे ने, वनस्पति भी, दरख्त भी पूजे जांदे ने, और पशु पक्षी भी पूजे जांदे ने। अज भी स्नेक टेंपल बहुत वड्डा चाइना दे च है, मलेशिया दे च है, सप्पां दी पूजा चाइनीज लोग करदे है। भारत दे च गऊ दी पूजा, सप्पां दी पूजा, नाग पंचमी एक बहुत वड्डा त्योहार है। दरख्तां दी पूजा, पिपल दी पूजा, जंड दी पूजा, बोड़ दी पूजा, बेरियां दी पूजा आदि काल तो चली आ रही है। ऐसा देखे जिस जिस पत्थर नो सुभाग मिल गया, पत्थर ही हीरा बन जांदा है, पत्थर ही मोती है, पत्थर ही मूंगा है, पत्थर ही पुकराज है, पत्थर ही नीलम है, पर ताज दे जड़िया जांदा है। ये भी मैं अर्ज करा, नीलम दा मोर अकाल तख्त ते पे है, बड़ा खूबसूरत। थाईलैंड दे नीलम दी मूर्ति है महात्मा बुद्ध दी, कहिंदे ने घट तो घट ओ मूर्ति अज दे हिसाब नाल 20 करोड़ रुपए दी है। पूरा नीलम दा पत्थर उदी मूर्ति बनाई है। तो हैं ते ए भी पत्थर चमक गए ने, जरा कोमल हो गए ने, रोशनी आ गई है। तो पत्थर भी कीमती हो सकता है, वनस्पति भी कीमती हो सकती है। चंदन बड़ा कीमती है, कुछ फूल बड़े कीमती ने, केसर बड़ा कीमती है, ऐते वनस्पति। कुछ पशु भी बड़े महान ने, गऊ है, हाथी है, घोड़ा है, मोर है, हंस है। इस वास्ते कोई बड़ा पवित्र होवे ते कह देने है ते हंस वर्ग है, कोई बड़ा शरीफ से भले मानस हो वैसे ही कहने हैं निरी गऊ है, निरी गऊ है। बड़ा बहादुर होवे तो इसी कह देने निरा शेर है, तो शेर दिन है, शेर। जिंदगी देच कोई कीमत उसने प्राप्त कर ली है, कोई रब्बी रस मिल गया, कहने ते हीरे वर गए, निरा हीरा। तस्बीहां ते दें दे। पत्थर चमक जाए ते मनुख दे अंदर चमक ना पैदा होवे तो फिर पत्थर मनुख नाल वगे। वनस्पति दे च महक आ जाए ते कोमलता आ जाए, ते मनुख दे च कोमलता ना आवे ते महक ना आवे तो ये वनस्पति नालों पछड़े होया। पशुआं दे च दलेरी भी आ जाए, शराफत भी आ जाए, भले मानसी भी आ जाए, ज्ञान भी आ जाए, ते मनुख दे च ना आवे तो इहदे नाल पशु चंगे ने, कुछ पशु चंगे ने। ये भी मैं अर्ज करदे हां, मनुख हो के चमक नहीं आई, पत्थर चमक गए, पत्थरां चमक पैदा हो गई। मनुख हो के हिरदे च चानना नहीं आया, पत्थर चमक गए ने, हीरे चमक जांदे ने। कोहो नूर हीरा जिहड़ा इंग्लैंड दे पिया उहदे ते रोशनी है, ऐ ते हीरा है। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, मन जिस दिन पूरा जाग जाए तो हीरे की ने, ते गऊ की है, चंदन की है,
मनुख का मन परमात्मा हो जाता है, ईश्वर हो जाता है। बिगड़ो कबीरा राम दुआई साच भयो अन कदे न जाए, नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यो पानी संग पानी। हुण मैं अर्ज करा, जितना मन किसे दा जागया इंसानियत उस देच उतनी है, उस तो ज्यादा नहीं है। जिड़ा अचेत भाग मन दा है वो पशु होवेगा, बनस्पति होवेगा, पत्थर होवेगा। बड़ा कठोर व्यवहार है, बड़े सख्त बोलने, दिल बड़ा पत्थर है। अजे पत्थरां दे संस्कार बड़े प्रबल ने, थोड़ा जिहा जागा बाकी सुत्ता पे है, जिवें पत्थर सुत्ता होया। पत्थर पूरन सुत्ता होया, परमात्मा पूरा जागया होया। सुते दी यात्रा है जागे, प्रकृति पत्थर नू थोड़ा जगांदी है बनस्पति दे रूप च, होर थोड़ा जगांदी है पशु पक्षियां दे रूप च, ते प्रकृति जगांदी है पशु पक्षियां नू मनुख दे रूप च। ते मनुख नू खुला छोड़ देता है, हुण तू आप जाग, मेहनत कर, यतन कर। क्यों? हर चे सूद बरायद देर ना पायद, जिड़ी चीज छेती मिल जाए बिना मेहनत दे मिल जाए मनुख कदर नहीं करता, नहीं करता। प्रभु दा नियम ये मेहनत करे, जिन्ने नाम दे आया गए मुशक्कत घाल, गालना गाले, गालना घाल गाल के कुछ मिले, कुछ प्राप्त हो गए। कारण मैं फिर अर्ज करा, जिड़ी चीज मुफत दे च मिल जाए बिना मेहनत दे मिल जाए मनुख कदर नहीं करता। होती तो प्रभु का यह नियम परमात्मा ने खुला छोड़ देता है मनुख ने। मनुख चौराहे ते खड़ा है, अगर अगे चला गया तो परमात्मा बनेगा, पछड़ गया तो यह पशु बनेगा। शरीर का अंत होया तो अजे जन्म नहीं होया, सज्जे चला गया तो देव बनेगा, एक पवित्र रूह भटकती रहेगी। खब्बे गया तो एक मलीन रूह है, इनू भूत प्रेत कहते, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गा। सुखमनी साहब, छे अरब के करीब इस वक्त जमीन देते मनुख ने, तो इतनिया ते रूहां समझ लेनिया चाहिए ब्रह्मंड दे छ। चंगियां नू देव कहिंदे ने, माड़ियां नू भूत प्रेत कहिंदे ने। और धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी इसका जिक्र करते हैं, कहूं जच गंधर्व उरग कहूं विद्याधर कहूं भय किन्नर पिसाच कहूं प्रेत, पिसाच भूत प्रेत पिसाच। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाज। सूक्ष्म शरीर जद इस अस्थूल शरीर दे चो निकलता है, सारे संस्कार उसे दे चो दे, चंगे ते माड़े उन्हें ही संस्कारां दे मुताबक अगे जन्म आउंदा है। लेकिन बहुत माड़े संस्कार ने, जिवें हिटलर, मोसोलिनी, चंगेज खान, हलाकू, औरंगजेब, हरनाकश, इन्हां नू छेती जन्म नहीं मिलता। इन्ने माड़े संस्कार, पत्थर दिल पत्थर दिमाग, कोई बिल्कुल कसायण ते डायण मां होवे उहदे राहीं इन्हां दा जन्म होएगा, उंज नहीं होएगा। दूसरे देव ज्ञानी सन, जप करते सन, तप करते सन, परमात्मा तक नहीं पहुंच सके, मुक्त नहीं हो सके। जिमें 100 मील की वाट होवे, 90 ते तय की थी सी, पर शरीर का अंत हो गया, सूक्ष्म शरीर ते अस्थूल शरीर का संबंध टूट गया, तो यात्रा ते विचे रह गए। इस तरह के सूक्ष्म शरीर अति पवित्र होंदे, इन्हां नूं देव कहिंदे ने, इन्हां दा भी जल्दी जन्म नहीं आउंदा। क्यों? बिल्कुल देवी मां चाहिए है, पवित्र गोद चाहिए, संस्कारां दे अनुकूल चाहिए, तां जन्म होवेगा, उंज नहीं होवेगा। यह प्रकरण अलग है, किसी वक्त मैं खोलांगा, अज ते जो कुछ मूल गल है वह थोड़े सामने रखा। आम साधारण मनुख 10-12-13 दिन के अंदर जन्म लै लेंदे ने, कई ते इधर मरे इधर किधरे गर्भ दे प्रवेश कर गए। आम साधारण मनुख, साधारण तो मुराद की ही, ना देवता बन सके, ना पशु बन सके, ना अगे गए ना पिछे गए, उत्थे ही रहे।
समाज का भय कानून का भय गलत नहीं करते रहे, बस मनुखां की तरह जीवे, अगे नहीं जा सके। मौत हो गई है, इन्हों का छेती जन्म आता है। आम साधारण सूक्ष्म ढांचे बड़े छेती जन्म देते, असाधारण विशेष जल्दी जन्म नहीं देते। इनू इकबाल तो इंज कहिंदा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूर ही पेरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कदी कदी मनुखी गुलिस्तान विच कुछ ऐसा फुल खिड़दा है जो मनुखता नूं मुअत्तर कर देंदा है, बागो बाग कर देंदा है, कोई नवी क्रांति लैंदा है, पर कहिंदा हजारां साल उड़ीक करनी पैंदी। बड़े लंबे समय तक ये देव उड़ीक करते ने, इस दे को सिमरें देव याद कर दें, सानू जन्म मिले, पर हर गोद दे राही नहीं आना चाहते। जिमें बंजर जमीन दे गुलाब नहीं पैदा होता, घास कंडे पैदा हो जाते, हो जा गुलाब नहीं पैदा होता, चंदन नहीं पैदा होता। हर गोद देवते नू जन्म नहीं दे सकते। अजोका समाजिक जीवन इतना भ्रष्ट हो गया, गुस्ताखी माफ, इतना मैला हो गया। गुरु नानक देव जी महाराज एक दो शब्द उच्चारण कर रहे हैं, सामने आ गए ने, हुण मैं कह ही रहा। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिगदार। इस कलयुग दे इस दौर दे जिन्ना दा जन्म हो रहा है, भूत प्रेतां दा जन्म हो रहा है। गुरु नानक पुत जनूरा धी जनूरी, पुत जिन बहुत है ती भी जिन बहुत है। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा ती जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। ये जिन भूतां दा जन्म क्यों हो रहा है? महाराज कहते हैं समाजिक जीवन भ्रष्ट हो गया है। किस तरह भ्रष्ट हो गया तो सतगुरु दसते ने, रन्ना होइयां बोधियां, पंक्तियां ना आउंदियां, बाणी ना आउंदी, ते मैं कहना भी नहीं सी, ग्रस्ते आदमी मैं।

शरीर की प्रदर्शनी करनी, शरीर की नुमाइश करनी। नक्शे कदम ते बाकी दुनिया भी चल पी है, एशिया भी चल पे। रन्ना होइया बोधियां पुरख होए सयाद, ये पहले पातशाह जी दे बोले। सयाद फारसी का लफ्ज है, पुरुष शिकारी ने देखना चाहते, इस तरह का फैशपना देखना चाहते, ये तो शिकारी ने। तो स्त्री इतनी चंचल और नुमाइश करना चाहती है। सील संजम सुच भन्ने, कोई शील नहीं रहा। सील संजम सुच भन्ने, खाना खाज अखाज सरम गई घर अपने पत उठ चली नाल। नानक सच्चा एक है अवरना सच्चा, शर्म हया ते पता नहीं कित्थे चली गई। हुण घर घर विच जिन भूत नहीं पैदा होणगे तो और की होवेगा। कली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार, पुत जनोरा धी जनोरी। जिन भूतां दे पैदा होण दा माहौल है, भाव माड़े सूक्ष्म ढांचे जिहड़े शरीर ने उन्हां दे पैदा होण दा माहौल बनिया होया है। देवते पैदा हो सकन माहौल नहीं है। कोई 2-2.5 हजार साल पुराना इतिहास देखिए भारत का, कहिंदे हर दूजे तीजे घर विच देवता हुंदा सी, देवी हुंदी सी। लोकी कहिंदे सने मनुख नहीं है देवता है, इंद्र देवता सी, शिवजी देवता सी, विष्णु देवता सी, जमीन दे ही बंदे सन। जिवें अमृतसर वसाया धन गुरु रामदास जी महाराज ने, बनारस शिवजी ने वसाईए, जमीन दा ही मनुख सी। हर दूजे तीजे घर विच कोई देवी हुंदी सी, देवता हुंदा सी। लोकी कहिंदे सने मनुख नहीं, इहदा दीवा जलिया होया देवता है। माहौल इस तरह बदल गई है, हुण हर एक अद घर नो छड़ के दूजे तीजे घर दे भूत प्रेत ही ने। गुस्ताखी माफ, सतगुरु इस तरह कह रहे हैं। हुण देवतियां दे दर्शन औखे हो गए, भूतां प्रेतां दे दर्शन करने ओ ही जन्म लेंदे। फिर संक्षेप दे जो है मैं अर्ज करा लमकावां ना, मनुख दी जीवन यात्रा उत्थे समाप्त होवेगी जिथों चली सी। जित दुआरे उबरे, जिथों उबार होया, जिथों असी आया, परमात्मा तो आया, परमात्मा ते यात्रा समाप्त होवेगी। परमात्मा साडा घर है। किड़े दरवाजे तो आया? शब्द दे दरवाजे तो आया। उत्पत परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होए, क्योंकि कीता पसाओ एको कवाओ। एक कवाओ तो सारा पसारा होया, एक शब्द तो सारा पसारा होया। शब्द दरवाजा है। हुण बड़े ध्यान नाल सुनना, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है वही शब्द दे रूप दे गुरु है, जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। नानक सौदे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाही दे। फिर दो नाम क्यों ने? दो नाम इस वास्ते ने, एक दर है एक घर है। पर दर ऐसा जो घर दे नाल जुड़े होया है। दर तो लगना है ते घर दे प्रवेश करना है, शब्द दा जप करना है ते शब्द ने प्रकाश कर देना है। बस इन्नी ही गल। सुते मनुख नु किस तरह जगाओगे? आवाज नाल जगाओगे ना। एक मनुख सुता पे है, कुछ खड़ाक करोगे ना, आवाज करोगे ता जागेगा ना, ताऊ दी नींद टूटेगी। सुते मन नु किस तरह जगाओगे? सिमर सिमर गुरु सतगुर अपना, सोया मन जागा। वाहेगुरु वाहेगुरु दा जप वाहेगुरु नु सुनाण वास्ते नहीं है, अपने आप नु जगाण वास्ते। ए बारीकी हुण मैं थोड़े सामने रखदा। पूरा सुता होया मन पत्थर है, पूरा जागया होया मन परमात्मा है। पत्थर दा भविष्य है परमात्मा होना। पत्थर नू प्रकृति बनस्पति च ले आई, पशुआं च ले आई, मनुखां च ले आई, इत्थे तक प्रकृति ले आई। मनुख नू प्रकृति ने खुला छोड़ दिता, स्वतंत्र है। तेरी मर्जी है सच बोल, तेरी मर्जी है झूठ बोल, तेरी मर्जी अखां बंद करके चल, तेरी मर्जी अखां खोल के चल। कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन फल की स्वतंत्रता नहीं है। जैसे मैं मकई भी बोदे हाँ, फिर मैनु ख्याल आया मैनु ते कणक चाहिए सी, एवं गलती हो गई, मकई बीज बैठा। अच्छा हुण मैं अरदास करा, परमात्मा मेरे को गलती हो गई है, भुल हो गई है, तू कणक पैदा कर दे। नहीं, कणक तां पैदा होगी जे कणक बीजनी सी।
ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਵੀ

कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हमें रोग मानक को दीना काम रोग मैं गलवस कीना दृष्ट रोग पचमुए पतंगा नाद रोग खप गए कुरंगा जो जो दिशे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालु जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिबलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। तन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी

ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਤਨ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉਂ ਬਾਲਨ ਖੱਡ ਬਲਨ ਪੈਰੀ ਥੱਕਾਂ ਸਿਰ ਜੁਲਾਂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਪਿਰੀ ਮਿਲਨ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਾ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਨ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉਂ ਬਾਲਣ ਖੱਡ ਬਲਨ ਪੈਰੀ ਥੱਕਾਂ, ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂ ਸਿਰ ਜੁਲਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਵਾਂ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਪਿਰੀ ਮਿਲਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕੇ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉਂ ਬਾਲਣ ਖੱਡ ਨਾ ਬਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਖੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਨਾ। ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉਂ ਬਾਲਣ ਖੱਡ ਨਾ ਬਾਲ, ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ ਅੰਦਰ ਪਿਰੀ ਨਿਖਾਲ। ਦੇਖ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਲੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਿਕਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਵਰਤਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਖੋ ਸਭ ਹੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਐਨਰਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਈ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਅੰਸ਼, ਇਹ ਊਰਜਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫਸਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੌਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੁੱਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਵਰ ਕਮਲ ਕਿਰਨ ਆਗਾਸੀ ਬਿਗਸੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਹੁਣ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਨ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਈਲਸ ਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਊਰਜਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਕਨਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕਤ, ਇਹ
शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने, चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोना दी दूरी है। ना ता चकोर नू किसे ने स्कूल विच, किसे ने किसे कॉलेज विच, जा किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उनू सिखाया कि आओ देख रात नू चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नू एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं प्रेमा भगती, प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच पैदा हुए चंद्रमा नू देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नल तकी जाना है। हालांकि इथो तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नू देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदो चंद्रमा आउंदा आसमान ते एक टिक ओनू नजर टिका के देख दिए, चंद्रमा जदो ए अपनी थां सारी रात बदलदा है, अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदो रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उन्हे ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नू अपने जिस्म नू कमाना है, उदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नू उन्हें सवेर तक लेंदे वाले पासे आना है। चकोर अपने पैरां नू सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नू ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़ती है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उन्हू अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नू चुका के अपनी पिठ ते ला लेंदी है ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है, चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर ले कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नू जे किते मनुख समझे उसे खिच नू ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही पर ओदा चंद्रमा नल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचो अर्ज कर रहे हैं, भाई साहब ने पहला वचन किया, चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, प्रेम है, ते ओ एक टिक चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है, लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लानी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे ने देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टिक हो के चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है, लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है, मिल खून सुखाले। हुण इत्थे भावे शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है, दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानण विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण एक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं, मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकदा, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओ केड़ी खिच है जेड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती कीती एक टिक हो के, ते अर्ज कर रहे हां कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा कीती है। कमल विच खिच है सूरज नूं देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है,
चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है, लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है, मिल खोन सुखाले, निहो कवल जल जानिए, खेड़ मूह बखाले, खुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे। कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने? जमीन ता ओही है, छप्पड़ टोबा ता ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे, पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओ पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जेड़ी दिसदी नहीं ओ खिच पानी विच ओनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन कीता, कहन लगे मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर ओनू देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है? ओ आसमान दे उते, ओ धरती दे उते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया ते अपने पंख ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै, उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारिए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपिया कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदो खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा भादों दा, उदो पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा है, ओ भी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। उदे विच वी एक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणू मां ते पुत्तर दी भी एक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी एक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे, चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है। प्यारिया के पानी जेड़ा वो सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमकदे कोई बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए बिलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड़ के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है, पर मौत प्यार नूं विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए, सच जानो ए प्रीत मरन तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। एक ऐसी प्रीत है, भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदिआं बहुत सोहणी पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है, लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है, मिल खोन सुखाले, न्यू कवल जन जानिया, खिड़ मूह बखाले, मोर बाबीए बोल दे वेख बदल काले, नार पतार प्यार है, मां पुत संभाले। पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है? पीर मरीदा पिर हड़ी ओ निभ है नाले, के मरीद दी ते पीर दी जेड़ी प्रीत है ओ तोड़ निभण वाली, ओ रस्ते विच टुटण वाली नहीं। आप तवज्जो देना, गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती कीती, ते जदों असीं बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्हां ने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नूं मुखातब करके प्यारे नूं प्यार करन दे कुछ जुगतां सानूं दसियां। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है, उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हां कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने, रहाओ दे बचन ने, मन रे क्यों छूटै बिन प्यार, हे मेरे मना की परमात्मा नूं प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा है, कि तू बंधना तो मुक्त हो सकना परमात्मा नूं प्रेम करन तो बिना। मन रे क्यों छूटै बिन प्यार, गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारियां थावां ते रविया है, ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नूं फिर समझिए, मन रे क्यों छूटै बिन प्यार,
प्यार तो बिना, प्रेम तो बिना उस परमात्मा नू कदी तू खुश नहीं कर सकता। गुरु तो बिना तेनू प्रेम करन दी जुगत नहीं आउनी। वैसे तो जे इंसान नू समझ पै जाए कि प्रेम, प्रीत, प्यार, नेह, ये जितने भी शब्द असी वरतने आ, जे इंसान दे शरीर अंदर, तन अंदर परमात्मा ली प्रीत नहीं, प्यार नहीं, ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने प्राण प्यार तो प्रीत तो बिना जिहड़े मनुखां दे तन ने, कहिंदे ने मानो ओह तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुरदे सड़ के किते मिट्टी दा ढेर हो जा। ओह तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्याख है, मरे कोई शरीर विच कोई हरकत नहीं, ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं, सच जाणियो ओह खाए भी पीए भी बोले भी, पर गुरु दी नजर विच एक ओ जिंदा लाश है, ओ मुर्दा है। जे उस अंदर प्रीत नहीं तां प्यार तो बिना छुट नहीं सकदा। हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, ये सारे गुण होण दे बावजूद भी मृतक कहिया नानका जे प्रीत नहीं। भगवंत बाबा नानक जी कह रहे ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, मृतक कहिया नानका जे प्रीत नहीं भगवंत, जे उस परमात्मा ली प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है। उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं, ओ मुर्दे नू जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है, कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना, बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने, उन्होंने जोबन दी गल कीती। हुण जवानी अपने आप विच परमात्मा दी एक बड़ी वड्डी दात है, ते जे किसे बंदे दे कोल जोबन भी है पर जोबन होण दे बावजूद उस दे अंदर प्यारे दी प्रीत नहीं, ते मेरे तन गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद साहब कहिंदे ने प्रीत तो बिना मनुख दा तन शमशान भूमि है, प्रीत तो बिना ता जवानी सड़ के राख हो जाए, उहदा करना की है। बाबा जी ने अमृत बचन कह जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए। कहिंदे जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा, सानू कोई डर नहीं। डर तां उदो है जदों वक्त समा जा जोबन जा जीवन परमात्मा दे प्रेम तो बिना चला जाए, सिमरन तो बिना चला जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनिया गजलों विच पहला शेर ही ये क्या है, पहली गजल दा कहन लगे खवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा। ऐ मिनसान तू वजूद विच ता आया है कि परमात्मा दी इबादत करें, परमात्मा दी बंदगी करें। जे परमात्मा दी बंदगी नहीं सी करनी ते फिर इस वजूद विच इस तन विच आउण दा लाभ की। कहन लगे फिर एवें आसमान दे थले अपनी जिंदगी दे दिन प्या कटने, बंदगी करके ही जिंदगी है, जे बंदगी नहीं ते सच जानी फिर जिंदगी नहीं। हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा, वगर मैं जो के चुनी आमदन नाबूद मरा। जे उस परमात्मा दी इबादत नहीं ते या अल्लाह या रब मैनू इस शरीर विच रहन दा कोई शौक नहीं, क्योंकि तेरी बंदगी दे शौक करके ही मैं जी रहा हां। प्यारियो तवज्जो दिया जे, बाबा नानक जी ने प्रेमा भगती कीती ते मैं अर्ज करना पिया बाबा जी दी बाणी विचो पुछ लईए कैसी प्रेमा भगती उन्हां कीती। उन्होंने विच प्रमाण दिता मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, ते बाबा फरीद कह लगे हकीकत है कि जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए। फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए।